ए शब्द भगत पीपा जी दा है, जेड़े कि अपने शब्द विच आपां नूं उपदेश करदे हन कि जो तुसी बाहर देखदे हो ओ तुहाडे अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पर जो खोजे सो पावे। जेड़ा अपने अंदर झाती मारदा है ओनू ही कुछ लभदा है। ते नाल ए भी कहा, पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुर होए लखावे। के सतगुरु की कृपा भी जरूरी है, ताई इंसान अपने अंदरों ही उसनु पा सकता है। भगत पीपा जी जिन्ना दा ए शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है, भगत पीपा जी जिन्ना दा जीवन त्यागमई रहे है। आप गगनौर दे राजे सन, राजभाग कोल सी, सारे सुख सन, पर भाग चंगे ने कि परमेश्वर वल भी ध्यान सी। साधा संतां दी बड़ी सेवा करया करदे सन। एक वरी कुछ महात्मा इन्हां दे राज विच आए ने। महात्मा दी शोभा सुन के उन्हां नूं अपने महल विच बुलाया, कीर्तन करवाया, महापुरशां नूं प्रशादा छकाया, सेवा कीती। संत महापुरश बड़े प्रसन्न होए, कहन लगे, राजन तुहाडे विच सेवा भाव बहुत है, असी बड़े प्रसन्न हां, पर ए दसो तुहाडा गुरु कौन है? क्योंकि गुरु तों बगैर गति नहीं हुंदी। ते राजा पीपा कहन लगे, महापुरशो, गुरु तां मैं कोई धारण नहीं कीता, पर तुसी कृपा करो ते दसो मैं किन्नू गुरु धारण करां। ते महापुरशां ने कहा, राजन ऐस वक्त काशी बनारस दे विच ब्रह्म ज्ञानी स्वामी रामानंद जी रहिंदे ने, तुसी उन्हां कोल चले जाओ ते उन्हां नूं अपना गुरु धारण कर लो। स्वामी रामानंद प्रवान भगत ने, जिन्हां दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित ना चले मन पयो भंग। संतां दे कोलों स्वामी रामानंद दी उपमा शोभा सुनी, स्वामी जी कोल जाण दी त्यारी

सेवादार नूं हुण बेनती करो कि हुण पीपा राजा नहीं रहा, वो एक गरीब है, एक फकीर है, वो दर्शन करने चाहता है। सेवादार ने स्वामी रामानंद नूं बेनती कीती है, स्वामी जी राजे पीपे ने सब कुछ दान कर दिता है, फकीरां वाले कपड़े पा ले ने, सोना चांदी सब कुछ गरीबां विच वंड दिता है। वो कहिंदा मैं हुण गरीब हां, मैनू दर्शन चाहिए ने, पर स्वामी रामानंद हाली होर प्रीख्या लैनी चाहते सन। कहन लगे अच्छा राजे नू कहो जे उन्हें दर्शन करने ने ते शहर दे बाहर एक खूह है, उहदे विच डुब मरे दर्शन हो जाणगे।

पर मन राजकाज च बिल्कुल नहीं लगदा। ते एक दिन राज भाग छड्डिया, फकीरां वाले कपड़े पा के अपनी एक राणी दे नाल, उन्हें भी सादे कपड़े

के पहला कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका नगरी चलिया जावे ते भगत पीपा जिड़ा हुन राजा नहीं रहा ओ द्वारका नगरी नु तुर पिया। ओ भगत पीपा जी सानू उपदेश करदे ने भाई ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई मैं तुहानू राम की दुहाई देना ओदा नाम जपो क्यों भटकदे हो ना माया ने नाल जाना ना तुहाडे शरीर ने तुहाडी नाल जाना एक राम का नाम है जिन्हें तुहाडी सहायता करनी है भाई मैं तुहानू वार वार दुहाई देना राम की।

इंसान परमेश्वर की बंदगी करते हैं, वो हमेशा वास्ते अमर हो जाता है। जिस तरह भगत दीपा जी होए ते गुरु अर्जन साहब ने भगत दीपा जी का यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज किया कि जिथे असी गुरुआ नू मथा टेकने आ भगत दीपे नू भी

कालजुग में कीर्तन पर्दा न गुरुमुख जपिए लाहित्या न परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी गुरु नानक देव जी तो लेके 19वीं सदी तक गुरुवाणी का कीर्तन तंती साज जिवे के रबाब सरंदा ताउस सरंगी आदि राही हुंदा सी। 20वीं सदी दे आरंभ होने ते गुरुवाणी का कीर्तन पच्छम दे साज हारमोनियम ते होना शुरू हो गया, जिस करके तंती साज अलोप हो गए। तंती साजा राही गुरुवाणी दे कीर्तन दी जो इलाही धुन निकलदी है ओ हारमोनियम ते नहीं निकल सकती, जिस करके सिख जगत ने अकाल अकैडमी बड़ू साहब दे बच्चियां नू कहा कि तुसी कीर्तन विच मुड़ सत्कार योग पुरातन तंती साज सुरजीत करो। सात संगत जी, संत अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले दी लाई हुई फुलवाड़ी अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहब दे बच्चियां लई अरदास करो कि आप दे ए निमाने बच्चे गुरु साहब दे बख्शिश कीते पुरातन तंती साज रबाब सरंदा ताउस सरंगी ते कीर्तन करके गुरु साहब दी बख्शिश लैन। हुण जिस शब्द दा गायन असी करन जा रहे हां ए पावन शब्द तन गुरु नानक देव जी महाराज दा राग बसंत हिंडोल विच उच्चारण कीता है। बसंत हिंडोल महला पहला। राजा बालक नगरी काची दुष्टा नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पड़िए पंडित करो बिचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन विद पावो प्राण पति रहाओ पितर अगन वनस्पत मौली सागर पंडे पाया चंद सूरज दोए घर ही पितर ऐसा ज्ञान ना पाया राम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रह कहे आ सुनहे ना खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा।

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पाई साहिब भाई गुरदास जी कहिंदे ने

बनारस तट ते कहिंदे संग नाल नाउण आ गए। जिस वेले नाउण वास्ते आए वेखदे की ने कि बड़ा सुंदर मेला लगा ते मेले विच लोग दान पुन कर रहे ने ते पंडित जी बैठे दान होकर रहे ने। कोई सोना दान कर रहा है, कोई चांदी दान कर रहा है, कोई रुपा दे रहा है, अपनी वत अनुसार हर कोई दान ते लगा। हुण भगत जी कहिंदे ने कि मैं भी तट ते आया, मैं भी कुछ दान करा, पर देखना भगत जी दे दान करन दा ढंग कैसा है। भगत जी दान इसलिए दे रहे ने कि उन्हां लोगां नूं समझा सका जिहड़ा दान तुसी पानी विच सुट रहे हो ओ भाई ओ किसी अर्थ नहीं लग रहा। क्रांतिकारी भगत उन्हां नूं ज्ञान देंदे हुए एक गल समझांदे ने

संगत हाथ जोड़ के महापुरखा कोलो पुछन लगी महाराज जदों सारी संगत असी मिल के बोलते सी ता एक बड़ी मिठी जी आवाज आउंदी सी ओ कौन बोलदा सी ता धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहन लगे प्यारियो जदों संगत मिल के बोलदी है ना मेरा गुरु नानक आप भी बह के कीर्तन करदा है आप भी बोलदा है तो इसलिए आओ उस रस मानन लई ओ आवाज सुनन लई सारे

एतन होती खाक निमाणी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गोर करे अज मिला शेख फरीदा तत्म पूंजड़िया अज मिला शेख फरीदा तत्म पूंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए।

सीधा जिंदनवाणी कटिए हड्डा को कड़काए खिंथल मेखा अगलिया जिंदन काई मेघ सीधा खिंथल मेखा अगलिया जिंदन काई मेघ वारी आपो अपनी चले मुसाइक सेख सेखा जाती जगमा कोई तेरे हाँ सेखा जाती जगमा कोई तेरे हाँ।

ज्ञानी त्याने चत्र देख रैण नहीं इठाए छाड़ छाड़ ले गए मूर्ताएं लपताए।

चले चल हार बिचारा ले मनो चले चलन हार बिचारा ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी नो जिमें पुछे।

छिल छिल और देहात है, फूटे कर जो पानी सो दिन आऊं लागा, सो दिन आऊं लागा।

नाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कह कबीर सुमरे प्राणी कह कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

समझ अचेत चेत मन मेरे, समझ अचेत चेत मन मेरे, कथे संतन अकथ कहानी, लाभ ले हर हृदय अरादो, सुखे आव जानी। जीवतला व्यवहार है जको तो जानो, जीवतला व्यवहार है जको तो जानो, नानक हर गुण गाए ले सब सुख समझ।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलू मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनियां ही उन्हां दियां मंगां, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगां कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ है। हां मंगना चाहिए पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे है। हे परमात्मा जिन्हें मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो कि निर्धन नूं, कमजोर नूं कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं। इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ, फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हूं सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नूं, गरीब नूं कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे। परमात्मा दे धन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने, घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी है। कहिंदे ने फिर सुत, हे परमात्मा पुत्र भी घर विच चाहिदे क्योंकि पुत्र भी एक निशान है, उहदा भी घर विच होना बड़ा जरूरी है। धन बहुता होवे, हर खुशी घर विच होवे, ते जे घर पुत्र नहीं, संतान नहीं, ते तां भी दुख है, वह भी बर्दाश्त नहीं हुंदा। इस तरह हे परमात्मा हर कोई तेरे कोल मंग मंग रहा है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। किस लिए मांग रही? साजनो तू मीत मेरो, गह तेरे सबके। तू मेरा सज्जन नहीं, तू मेरा मित्र नहीं, उस मित्र होने के नाते मैं ये मंगा तेरे कोलो मंग रही हां। सतगुरु कहिंदे ने ये मंग जायज होगी क्योंकि तू उन्हूं अपना सज्जन बना ले, अपना मित्र बना ले। वाकई ही भाई जी उन्हूं अपना बना के मंगे ते हर दाद चोली

मंगी जाए। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है, ना दिन विंदा है ना रात विंदा है, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना है? कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे? बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

तू उतना चिर ही सुखी वस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदों ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है, सारे लोकी तैनू जी जी आखदे हन, सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन, पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे, जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदों कोई भी तेरी बात नहीं पुछेगा जो साहेब अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

जितना चिर तू पेके घर विच भाव इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी तद ही सहुरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी। जो साहेब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

साहिब पंचम पातशाह अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं, ओ मनुख भागा वाला है जिससे मन विच तेरा प्यार जाग पिया, जिससे मन विच तेरे दर्शना दी तांग पैदा हो गई, जेड़ा विराग विच तेरे दीदार करना चाहता है, जिसके मन विच विराग है उसनु ही प्रभु मिल पैंदा है, ओ प्रभु दे दीदार कर सकता है जिसके मन विच विराग है। रायपुर दे रहन वाले सोना अते मोह जिन्हां नु भक्ति दा रंग चढ़िया है, दिन रात ठाकरां दी पूजा करदे हन, निता पर ठाकरां नु इशनान करवा के धूप बत्ती करके कीर्तन विच जुड़ जांदे हन, मगन हो जांदे। एक दिन ठाकरां नु इशनान करवाउण वास्ते जल लिया रहे हन, तां रस्ते विच एक गुरु दा प्यारा गुरसिख जो जख्मी हालत विच पिया है ते मुखों उचार रहा है कि कोई एक घुट पानी दा पिला जा, ता इन्हां ने सुनिया अते रुक गए, ता फिर की आखिया असी ता ए पानी ठाकरां दे इशनान वास्ते ले जा रहे हां, ए पानी जूठा हो जावेगा ता फिर तुर पे। फिर गुरसिख ने आवाज दिती, भाई एक घुट पानी दा पिला जाओ। फिर दोनों जने रुके, वापस मुड़े के इस नूं घुट पानी दा पिला दे, फिर आखदे हन के जे इस नूं घुट पानी दा पिला दिता ए पानी जूठा हो जावेगा, इस जल दे नाल असी ठाकरां नूं इशनान कराउणा। फिर तुर पे ता गुरसिख ने आख्या, तुसी एक घुट पानी दा नहीं पिलाया, अच्छा जिस ठाकर वास्ते तुसी जल ले जा रहे हो ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। आज गुरसिख दे मुंह चो ए आवाज निकली, ए आवाज सोना ते मोहना दे कन्ना विच पई, ता ए आवाज गूंज उठी, ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। घर आए, ठाकर नु इशनान कराया, कीर्तन करन लगे, पर आज मन नहीं जुड़ रहा, कन्ना विच ओ आवाज आ रही है ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त मन ना जुड़िया, सोचिया कि उस गुरसिख नु घुट पानी पिला आईए, हो सकता है साडा मन जुड़ जावे, ता उत्थे पहुंचे की तकिया, जो गुरसिख पानी मंग रहा सी अज शरीर छड़ गए, श्वास निकल गए हन, मन बहुत उचाट होए कि असी इस नु एक घुट पानी दा नहीं पिला सके, सचमुच एक बड़ा वड्डा पाप कर बैठे। ता पुछिया कि ए गुरसिख कौन है, पता लगा कि ए कलगीधर पातशाह दा अनन सिख है, प्यार वाला सिख है, जो संगत शहर कलगीधर पातशाह दे दर्शन करन जा रही सी, डाकुआं ने संगत ते हमला कर दिता, ता इस गुरसिख ने डाकुआं नाल मुकाबला कीता, ता डाकुआं ने इस नूं जख्मी कर दिता, जो कि पानी मंगदा मंगदा शरीर छड़ गए, ता इन्हां दोहां दे नेत्रां विचों अथरू वग तुरे कि असी इतने निभागे, इतने निकरमे कि असी इस नूं एक घुट पानी दा भी नहीं पिला सके। अज मन विराग विच आ गए, मन भर गए कि किसे तरीके सहिब कलगीधर पातशाह दे दीदार करिए ते अपनी भुल बख्शाई, ताज दोनों दे मन भर गए, दर्शनां दी तांग पैदा हो गई, उस सज्जन नूं लभण तुर पे हन। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शा हासिल कीतियां ता इन्हां दोनां नूं पता लगा सोना ते मोहना के साहिब कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे के चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त साहिब वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतों ने रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्ना विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर

अज मन विराग विच है। दोनों जने आनंदपुर साहब तुर पे कि पहला साहबां दे दर ते चल के सेवा करिए, फिर साहबां दे दीदार करा। जितना चिर सेवा नहीं करांगे उतना चिर साहबां दे दीदार नहीं हो सकते। ता दोनों जने साहबां दे बाग विच आए ता केसरा सिंह माली नूं बेनती कीती कि किरपा करो सानू ए सेवा दा मौका दे। केसरा सिंह ने गरीब जान के निमाणे जान के छोटे माली दे तौर ते रख लिया, दिन रात बूटियां दी सेवा करन लगे, श्रद्धा ते भावना नाल सेवा कर रहे हन। एक दिन शहर कलवी तरपाशा बाग विच आए ता एक फुलां दी क्यारी दे कोल खलोते बड़े खुश होए, बड़े प्रसन्न होए ते माली केसरा सिंह नूं शाबाश दित्ती, आखिया तेरी सेवा ते असी बहुत प्रसन्न, तू बहुत सेवा करदा। ता केसरा सिंह ने बेनती कीती, पाछा ए सेवा मेरी नहीं, ए सेवा छोटे माली दी है जो बहुत गरीब हन, आपे चरणा नाल प्यार करदे हन पर बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सेवा करदे हन, ए सेवा उन्हां दी। ता साहबा ने एक दम अखां बंद कर लिया ते मुख विचों साहबां दे ए आवाज निकली कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ए आके सह वापस चले गए ता केसरा सिंह ने सोना ते मोना नूं दसिया कि साहबां ने ए वचन कीते हन कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता दोनां दे नेत्रां विच जल वह तुरे। सावण भादो दी झड़ी लग गई ते आख्या, पाछा सानू दीदार नहीं होणगे, अज मन वैराग विच आया। अच्छा पाछा आप दी रजा है, जे दर्शन नहीं ता सेवा ही सही, आप दे दर ते सेवा करके दिन गुजार लवांगे। इन्हां दा नैन कटोरे भर गए, नैन तरसन लग गए, जो सहबी अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह आप क्यों दे हन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करन वाला है जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करता और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करता है सात सगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु का खजांची है जो अकाल पुरख वाहेगुरु के खजाने विच बख्शीशा हैं तू उन्हां वंडन वाला है सात सगत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नु जानिया है इस वास्ते संसार विच तू महाराजियां दा महाराज है तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं इस वास्ते मैं सारे संसार नु छड़ के तेरे चरणों विच आया हां

मेरी चोली किसे ने नहीं फड़ी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी। ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भरती जांदा है। सत सहित बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेज नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलों का हाल जानता है।

देख रहा फतह गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा रहा गुरु गोबिंद सिंह, साहिब दे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज दा मालक है, संसार दा मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला है। सात संगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जो आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के नाल, जाद्या जाद्या जो अमृत वेला होया तो साहब जी ने आख्या भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हैं कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा की वार का समा हो गया, कोई है कीर्तनिया पर सानू कीर्तन सुनाओ। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खरार दियो सारे हन, जे दुश्मन दल आवे ते उसनु रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे। सत सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीस चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए हैं। संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता जी। साहब जी कहन लगे दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते, दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इथे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती कीती है, असी ए सौदा सस्ता कीता। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नूं शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं, आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी। हिंदू धर्म की रखिया की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर 4 बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान किया धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया,
आ सारा सरबंस दान कर देता तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सात सगत बोलो श्री आख्या और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुईयां ते अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार ते दुश्मन दे कई दलां दे दल मार मुकाऊं ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले इस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दी चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरा पा के खलारिया ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए कि हिंद दा पीर जा रहा जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनू रोक के दसो। सात सगत बोलो श्री अनेका ही नू साहब जी दी तलवार प्या शो प्राप्त होई दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विच अगां लंघ गए। दुश्मन घेरे ने तोड़ छड़िया तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकता है तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं मुसव्वर खेंच ले तस्वीर ये तुझको रिसाई है दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है। यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है मिला तुझसा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे हुए